सच्चनाम सच्चनाम सच्चनाम जी बोलो। नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो। नित्य नित्य जपिए।

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो सत्य नाम सत्य।

जप जान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना क्या कर्म नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं।